तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: बच्चों को चूस कर गुठलिया फेंकती है।
1: पेंट चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे, राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे, पंडता खाली कितड़ बहे नूरे लाई आउणगियां, हुण नी जज जमानत दिंदा।

कुछ गल्लां दस सकदा, कुछ दस के भी समझ नहीं आनी। कुछ तेरियां ने, कुछ मेरियां ने। तेरा मिलना, तेरा विछड़ना, तू कदे परछावे तो नेड़े, तू कदे सब तो दूर। तेरा हासा, तेरा रोना, ते कदे कदे एकदम चुप होना। सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नू जीना सिखिया, निक्कियां चीजां च खुश होना सिखिया, उच्ची उच्ची हसना सिखिया, दिल च की चल रहा तेरे नाल शेयर करना सिखिया। हां खुशी है मैनू तो जिंदगी किदां जीनी है ए दसिया, पर अफसोस तेरे बिना किदां जीनी है किते ए नहीं दसिया। गल हुण संघणी धुप दी गर्मी ते रातां दी त्रेल तक है, दुनिया जितन ते हारे हुए खेल तक है। ए मेरी खुद दी बनाई दुनिया, जिदा एक हिस्सा बना के थोड़े हिस्से कर लग्या। विद माई फर्स्ट ईपी एडिक्शन।

बापू रोवे मच गई फसल गुड़े पांच छे किले नाल चाचे दे सानू चप्पलां हुण तक जुड़िया नहीं कित्थों लईए बैग वरसाचे दे सुपने भी आउण सलाबे नहीं साडे घर दियां छत्तां कच्चियां ने करजे विच डुबे हरफ दियां जो तू सुनिया गल्लां सच्चियां ने जो तू सुनिया गल्लां सच्चियां ने अजे घेरे हां।

0: आग से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते.
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता नहीं।

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: हाँ तो दोस्तों गल ऐसा है कि भाई मैं रात नूं बैठा सीगा मूड रूम वाल देखी जाते ही ते ओदे विच मैं चन नूं देखिया ते मैं चन नूं देखिया तो उन्हें मैं की गल्लां कीतियां जिवें मैनूं ऐ लग्गिया सुन के।

0: अपना फर्ज अदा कर गया, असि अपना फर्ज निभावांगे, तेरी रीत नू लैके चलांगे, तेरे वांगू एंड करावांगे।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

0: where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

लिए बात याद करोगी जब दूर चली जाओगी, बहकने दे मन को और कितना समझाओगी, तड़पोगी जब रेगिस्तान में प्यास लेकर आओगी, कहाँ इतनी प्यास लेकर जाओगी, पीछे मुड़कर देखो तो

बैठे चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे घर जला बैठे।

0: थोड़े चाते बहुते दर्द जो दिल दे विच लको गया है। लै मां तेरा सियाने वर्गा पुत परदेसी हो गया है, परदेसी हो गया है।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।